अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सुवारे, गावह इंदासन बैठे, देवत्यां दरनाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ नरखी सरे,

पवन गुरु पाणी पिता माता तहत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत चंगयाइयां बुरयाइयां वाचै धर्म हदू।

विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जोग जोग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले, गावन तुद

रंगी भांति कर कर जिन से माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई।

विश्वास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित बहे उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्र।

तेरी अनक तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवट अवर नाम कोई, तू जोग

ना पहावई ता सब अडंबर कूड़। सब रस भोगण बाद है, सब रस भोगण बाद है, सब श्रृंगार विकार। जब लग शब्द ना पे

गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संजोग काया कामण जे करी भोगे भोगण हार काया कामण जे करी भोगे भोगण हार तिस्यों ने होना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सोहागणी सो प्रभ सेज पतार।

सतगुरु सेवने अपना ते विरले संसार हौ मैं ममता मार कै हर डाक्या उरतार हौ तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार से सुखिये चौ जुगी जिन्ना नाम अखुट अपार गुर मिलिया नाम पाइय चूकै मोह प्यास हर से ती मन रब रहया।

रते से निर्मले हों सद बलिहार जास। हृदय जिनका हर बसै तित कट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय।

गया पछताए। जिस नदर करे सो उबरे हर से पील बलाए। देखा देखी सब करे मन मुख बूझ ना पाए। जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है

मन तन सौंपे आगे धरे हो मैं विच हो मार। तन गुरमुख सो परवान है जे कदे ना आवे हार। कर्म मिले ता पाईए विण कर्म पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए। नानक।

गुण को नहीं बहन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्द।

जिन सब किछ वस कीता, घर इको बाहर इको, थान थनन तरे आप, जी जंत सब जिन किए, आठ पहर तिस जाप।

जिन्ना सतगुरु सिउ चित लाया से पूरे प्रधान। जिन कौ आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिन कौ मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखां सुख उपजै।

आप होवा मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुण सार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह।

प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बिखसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सिउ मरै ना आवै जाय ना वे छोड़िया बिछड़े सब मह

रूप अपार, सखा सहाई अत वड्डा, ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरद ना जानिया, निहचल तिस दरबार, जो मंगिया सोई पाई, निधारा आधार। जिस पेखत किल विख रहै, मन तन हो वह शांत, एक मन एक त्याई है, मन की लाहे प्रांत। गुण निदान नव तन सदा, पूर्ण जाकी दात, सदा सदा आराध्य है, दिन विसरहो नहीं रात। जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद, तान मान तहन अर्पी सबो, सगल वारी है ए जिंद। देखै सुनै हदूर साध, घट घट ब्रह्म रविंद, अकिरत कणा नू पालदा, प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभु अपनी एक निमख न मनहो विसार रहाव गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीर्थ वर्थ लक

थान थनंतर डब रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजियो।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखे

राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

वां कार सेवां करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसह त्यावहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याए गुर के चरण मन मह त्याए छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ ब्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौ तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाउ सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

ठाकुर सर्वे समान क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही कहन कहावन इहो कीरत करला कथन कहन

पाए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रब रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

रहाओ। गुर समरथ अपार गुर वड भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जे वड अवर ना कोए। गुर कर

सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास। हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास। श्री राग महला पंजवा।

नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

दर दर वेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे पूछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना

जाए नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी मन धन मांडी है साच धड़ी धन मांडी है कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जाने साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों तेर दिन रहन विहाए अंक जलाओ तन जा लियो मन तन तन बल जाए अंक

शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार आस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदै पाए गुरडाखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए।

सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान।

जान बिन गुर कर्म न छुट सी कह सुन आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोय हर वर नार सुहावनी मैं पहावे प्रभ सोय नानक शब्द मिला बड़ा ना वे छोड़ा होए श्री राग महला पहला।

श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी गुर मेली गुण चार साच मिल

गुर भंडार पाई है निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिय पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संहार भव जल बिखमंड रावण।

अभिमान नानक शब्द विचारिय पाइय गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िय पी विकसै असनेह जल मह जी उपाय कै बिन जल मरन तनेह मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहे।

अब पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

तिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजै हमें मैल न जाए सोहन आप पछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पछाणिए।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला। मनमुख भुलै भुलाइय फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोए।

प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार सातन आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार कर ही सो फिर पाया गुर कै हेत अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख हो।

मन मुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आनंदन भगत करह।

पंखी बिरख सुहावड़े ऊट है चौं दिस जाए, जेता ऊट है दुख घणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख ऊबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ, तिन्ना पास न बैसिय ओना कर ना गिराऊ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द।

समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया रसना हर

जाने खट दर्शन जगया खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम कुलाए सतगुरु सेव है तांगत मित पाव है हर जियो मन बसाए सच्ची बाणी स्यों चित लागै आवन जान रहाए पंडित।

जियो हो सतगुर विट हो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लै रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां कौ जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब किछ जानदा।

खुद विटहु कुर्बान जियो, हर इठे नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै बण जारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, बण जारिया मित्रा, आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया। मात पिता भाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया। कर्म

कहो नानक भगत सोह है दरबारे, मन मुख सदा पवात, श्री राग महला चौथा, घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद इयाणी पे यड़े, क्यों कर हर दर्शन पिखै, हर हर अपनी कृपा करे, गुरमुख सौहरड़ै कम सिखै, सौहरड़ै कम सिखै गुरमुख, हर हर सदा त्याए, सहिया विच फिरै सुहेली, हर दरगाह बां लुडाए, लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम के रखै, मुंद इयाणी पे यड़े, गुरमुख हर दर्शन दिखै, व्याह हुआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लाधा, हौं मैं रोग गया दुख लाथा, आप आपै गुरमत खादा,

सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंड वर भंड हर सोभा होई इहो दान ना रलै रलाया होर मन मुख दाज जे रख दिखा लहे सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबूला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबूला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो जुग।

प्राण अधहरे, गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो, मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए, कोय न दिसै डूजड़ो। खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ।

आओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर न करना जाए महला तीजा। होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक विणना मैं को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर। पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लय हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम,

पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया, तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम त्याइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर

प्रयातुत भगवंता मोहे रैन ना बिहावै नींद ना आवै बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमहाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाउ भाग होवा गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर्म है पाया सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया।

सोहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया अंध बिनोद तितै कर सोह है जो धन कंत सिंगारी जियो सागुणवंती सावड भागण पुत्र वंती सीलवंत सोहागण रूपवंत सा सुगड़ विचखण जो धन कंत प्यारी जियो अचारवंत साई परधाने सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सबराई जो पिर कै रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कहन ना जाए जो पिर मेल लई अंग लाए थिर सुहाग वर अगम अगोचर जन नानक प्रेम साधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे भांत भांत बन बन अवगाहे निर्गुण।

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथा बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौं जीवां जियो। दुख पंजन निदान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहौ मन सिमरत ठंडा थीवां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला।

तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्श

संत खेल है तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिन कै संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो, माज महला पंजवा।

जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय बसेरा। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो। प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो। जिस

नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संग राता प्रभ प्रत पाले सेवक सुखदाता

विचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

गोविंद प्रभ नानक सर्व समाहया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित बस है हर जन सच्चे नाम बिटहु कुर्बानो जियो सच बडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म न कह।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माज महला पंजवां।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी। बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइये, जिस सिमरत वर निश्चल पाइये। नानक कौ प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरै मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्शहिंदे वडियाई।

मनमुख मुगध करह चतराई नाता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावण्या मनमुख अंधे किशु ना सूझे मरण लिखाए आए नहीं बूझे मनमुख कर्म करे नहीं पाए।

भाए माया मन परम अवहे माया मोह सब शुद्ध गवाई कर अवगण पछोता बणिया सतगुर मिले ता तत पाए हर का नाम मन वसाए।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया। मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए। आन दिन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवै जिसनों आप पी आए।

मिलै ताचू कै फेरा, जां तुद भावै ता नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउ लिव लागी।

गुरमुख सच्चो सच लिख है विचार, सेजन सच्चे पाव है मोख द्वार। सच कागद कलम मसवाणी, सच लिख सच।

नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे हो मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया।

रहाओ। गुरमुख जीवै मरै परवान, आरजा ना छीजै शब्द पछाण। गुरमुख मरै ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच हो आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर, गुरमुख होमै चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल।

गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा मह एक थान सुहाया पूरा गुर हौ मैं भरम चुकाया आन दिन नाम सलाहन रंग राते।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सुख है कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगर न पूहै तिनको रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली।

वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा ब्रह्म मिले ता उतर है सब वियोग नानक को प्रभु राधा।

हो भूख सोहंदा सर्व सुख जिस बख्शे परवाह माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याय सुन सबनानो कर दान जन्म

बिन नाम है मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

आप बुझाए सोई बुझै, जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझै। कह कह कथना माया लूझै, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक अखियो आप। लह प्रांत होवै जिस दात पौड़ी।

मैं बनजारण राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा।

इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा, इस काल युग में कर्म

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वस्या मन आए, आन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरै परती।

पेई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव कड़े गुण समलै सहरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरै पेय फिर वसै कहो कित विद पाइय आप निर

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

दिनस जाए कूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्यावे।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लाग। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आ गए। जन नानक हर रस तृप्ते।

ता हर नाम मन चित नित त्यावहो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राए गुर शब्द गुरु लिब लागे हो मन तन देवो काट गुरु को मेरा भ्रम पाओ गुर बचनी।

पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी।

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो मन मोर कोह

सिर ऊपर ठाडो धर्म राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हों बंधों हों साधों बैर, हमरी भूम कौन घाले पैर।

इस ग्रह में कोई जागत रह साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन।

एक महल ने मानो, एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो, एक महल तू पंडित बकता, एक महल खल होता, एक महल तू सब किश ग्राहज, एक महल

लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तहरे ओ, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे।

पत पाए। गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जाने आ, गुरमुख भगत विरले मन माने आ, हों हों करत नहीं।

हों मैं निवरह गुर शब्द विचारे, चंचल मत त्यागे पंच संहारे। अंतर साच सहज कर आवहे, राजन जान परम गत पावहे। सच करनी गुर परम चुकावे, निर्भौ कै कर ताड़ी लावे। हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावे।

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं भ्रमणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वसिया सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई नानक सच नाम मल खोई।

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मह एको रवै।

मिल आप गवाइए। नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे, नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे। गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द

सो अपर अपारा सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए जिचर शब्द ना पीजै हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जम्मै वारो वार, वार।

नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त्र सिमरत सोध देखो कोए।

गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बोध हो बूझो सोई, लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझहो सदा सुख होई।

करै गुर कै शब्द पंच संघारै आप तरै सगले कुल तारै माया मोह नत बाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते भेख करै भेख धारी।

नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किशताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अरखेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो जीत हा।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तहर।

दिन सबेताला गिर तर धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

नाम समाहे। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिझे, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ई जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

मंडन दुख पंजनों भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो दर

गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे। साधन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे। अपने गुर

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको रा।

जुगम है एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट में है उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, तार हो कृपा जिस है गुसाई, एत ओत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

पौड़ी। एक है आप करावन हारा, आप है पाप पुन विस्थारा। या जुग जित जित आप है लायो, सो पायो जो आप दिवायो।

मणि मिटाए जीवत मरे गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिले तह सूर तन वेस ना को जाने अपनो एक है टेक आधार रैन दिन सिमरत रहे सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन।

हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक कह हाथ जित जित लाभ हो।

होत सब जाकी, तज अभिमान छुट्टै तेरी बाकी, रण दरगाह तौसी जह पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई, रहत रहत रह जाहे।

अखर महंत्र पवन प्रभ तहारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

प्रभु कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभु कै सिमरन होए सो पहला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला।

प्रब कौ सिमरहै से मुख सुहावे, प्रब कौ सिमरहै तिन सुख बिहावे, प्रब कौ सिमरहै तिन आत्म जीता, प्रब कौ सिमरहै तिन निर्मल रीता।

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमा है उदाहरी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै।

देख अनेक अगन नहीं बुझाए, कोट उपाव दरगहा नहीं सिझाए, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट त होत निहाल। साध कै संग कलूख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।

सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म महसोद है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कै उपदेश।

बदी। मानो की टेक बिरछी सब जान, देवन कहो एकै भगवान। जिसका दिया रह अघाय, बहरना तृष्णा लाग आए। मारे राखे को आप, मानुख कै कृष्णा ही हाथ। तिसका हुक्म

आप अष्टपदी जब अकार एहु कछ न दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख।

सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे, भगत मुख है ते बोल दे, से वचन हो बंदे, प्रगट पहारा जापदा, सब लोग सुनंदे, सुख ना पायन मुग्ध नर, संत नाल खहंदे, ओए बोलन ओना गुणैनो, ओए अहंकार।

मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसै ही जरने बाणी उचरह साध जन अम्यो चलह चरणे पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरणे।

पंडित गुणी सूर हम दाते, इहे कहे बड़ हम ही, जिस है बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रहिए, सतगुर मिले अंधेरा चूके, इन विद्मान कलहिए।

खाए, आद पुरख मह रह समाए, द्वितीया दुह कर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग। ना ओह बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एकै पहाए, तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावे, साध

पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार मोह तुम तजहो सगल वेकार मोह अर भरम तजहो तुम वीर साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ।

रहाओ। हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित तहे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले, तीरज धड़ी बंधावे कामन, श्री रंग सुरमा देई।

पर्ण शोभा कंठ फूले प्रत्यक्षी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

हर एक है बहुविध सृष्टि उपाई हुक्मे कार कराएं दा दूजा किस कहिए पाई।

तहई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुक्त।

अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत।

सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे हर ना।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध।